0: आप भी अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर आएं। वेज थाली, चना भटूरा, अमृतसरी कुलचे का स्वाद बाय वन गेट वन ऑफर के साथ जरूर उठाएं। फ्रॉम 10 AM टू 8 PM सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशन 15 फेंडर वे 85 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट 275 गार्डन ब्रुक ट्रेल इन ब्रैम्पटन।
1: क्या बात है। ओके सो प्रोग्राम पिला मेरा 905-673-3337 नंबर है अपना 905-673-3337 अपना नंबर है 905-673-3337 905-673-3337 ते गल्लां बातें हो रही ने थानू की सुनाइए थोड़ी हजे रिक्वेस्ट दो चार मेरे को पईयां ने ते उन्हां विचों एक अद्धी पूरी कर दी यार थानू खुश कर दी ए ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਬੱਲੇ ਯਾਰ ਨਵੀਂ ਨੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕੇ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਹੁਣੇ ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬੱਬੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆ ਰੱਖਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਗਾਣਾ ਬੱਬੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆ ਦਾ ਕਿ

क्या बात है, क्या चाल है सब दे? उम्मीद है कि तुम सब ठीक ठाक हो, एंजॉय कर रहे हो इस बड़ी ही खूबसूरत शाम नू। वेलकम वेलकम वेलकम, हैप्पी फ्राइडे जूनियर।

0: अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर आएं। वेज थाली, चना भटूरा, अमृतसरी कुलचे का स्वाद बाय वन गेट वन ऑफर के साथ जरूर उठाएं। फ्रॉम 10 AM to 8 PM सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशन 15 फेंडर वे 85 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट 275 गार्डन ब्रूक ट्रेल इन ब्रैम्पटन।
1: वेरी गुड। सो सिंपली इंडियन ते एक बार गेड़ा मार के आओ। अज दा साडा सारे दा सारा प्रोग्राम स्पॉन्सर किया जा रहा है गेल फार्म वालों। गेल फार्म एंड प्रोड्यूस ते तुसी एक बार गेड़ा मार के आओ ते गेल फार्म ते थानू यार हर एक किस्म दी पनीरी मिल रही है। पहली गल तां डिक्सी ते किंग दे उत्ते लोकेटेड ने 14085 डिक्सी रोड 11 to 7 डेली खुलदे ने। थानू पनीरी सारी दी सारी मिल रही है। राम तोरी, लोकी, कद्दू, भिंडी, बैंगन सारी पनीरी ते पनीरी सिर्फ 249 $2.49 तो पनीरी है। बाकी इन्हां कोल सोयल मनूअर ऑरगैनिक कॉम्पोस्ट फार्म फ्रैश देसी अंडे प्योर फार्म फ्रैश हनी यानी कि शहद ते फ्रैशली मिल कीता चक्की दा आटा होल वीट रागी बाजरा जवार फ्लावर दा। जाओ ते लोकल तुसी शॉपिंग करो एट गेल फार्म कैलडन 1085 डिक्सी रोड डिक्सी एंड किंग गेल फार्म ते तुसी जरूर गेड़ा मार के आओ ते एंजॉय करो। वधिया टॉप टॉप टॉप दी डील एट गेल फार्म।

0: Yep. Asas, guasas, hebisas, nadit hosi bisas, bole sone hal, sasiakal.
1: टाउन पेमेंट मॉर्गेज दी बनी का गल
2: होए शम्मी पठल होरा नाल हो गई गल कार लेके देन तो अलावा डाउन पेमेंट ते मॉर्गेज दा भी मसला करनगे हल
1: रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदन वेचन या इन्वेस्टमेंट ले याद रखो भरोसे ते विश्वास वाला कम्युनिटी दा जानिया पछानिया नाम शम्मी पठल तुहाडीआं लोड़ां मुताबिक वधिया लोकेशन ते बेस्ट प्राइस ते घर आसानी नाल लेके दिंदे ने रियल एस्टेट ब्रोकर शम्मी पठल आज ही कॉल करो 416 917 7763 416 917

0: होलसेल क्लब विच कीमतां घट हो रही हैं।
1: पहला नालों में घट।
0: हाँ वेखो सैन पेलोग्रिनो दी चुड़िया हुई किस्मा 6x330 ml सिर्फ $5.99
1: ये तो होर भी घट है।
0: साडे बेसमेंट दे वाईफाई सिग्नल तो भी घट।
1: ओए तू कित्थे जा रही है?
0: अपने बिजनेस ले पैसे बचाउन। तुहाडे बिजनेस ले पैसे बचाउना साडा बिजनेस है। इस ले असी कई आइटम्स दी कीमतां घट कर रहे हां। कोई फीस नहीं। होर जानकारी ले wholesaleclub.ca देखो।
2: Wholesale Club, whole lot of value.
3: Swing into golf season with AM 530 at the MCPA 33rd Annual Golf Tournament, June 10th at Piper's Heath Golf Club. Sponsored by Medi Systems, Avenue Building Group, Liuna Local 183, Liuna Central and Eastern Canada, LSJ Services, and AM 530. Registration fee support community services and includes 18 holes of golf, power cart, prizes, lunch, and dinner. MCPA, meaningful interactions create benevolent acts. Register now or donate at micba.com.
0: होलसेल क्लब विच कीमतां घट हो रही हैं।
1: पहला नालों में घट।
0: हाँ वेखो सैन पेलोग्रिनो दी चुड़िया हुई किस्मा 6x330 ml सिर्फ $5.99
1: ये तो होर भी घट है।
0: साडे बेसमेंट दे वाईफाई सिग्नल तो भी घट।
1: ओए तू कित्थे जा रही है?
0: अपने बिजनेस ले पैसे बचाउन। तुहाडे बिजनेस ले पैसे बचाउना साडा बिजनेस है। इस ले असी कई आइटम्स दी कीमतां घट कर रहे हां। कोई फीस नहीं। होर जानकारी ले wholesaleclub.ca देखो।
2: Wholesale Club, whole lot of value.

0: पंजाबी लहरा
1: प्रोग्राम समर्पित है रंगले पंजाब नूं
0: पंजाबी बोली ते पंजाबी सभ्याचार नूं
1: गुरु साहिबान पीरां फकीरां दी धरती नूं
0: ठंडियां छावां जीआं मावां नूं
1: चौड़ियां छातियां वाले गभरूआं नूं
0: चरखा कतदियां ते पींगां झूटदियां मुटियारां नूं
1: लोक गीतां भंगड़े अते गिद्धां दीआं छनकारां नूं
0: प्रोग्राम पंजाबी लहरां
1: हफ्ते दे 7 दिन प्राइम टाइम ते पंजाबी लहरां पंजाबीयत दी सेवा विच
2: The views and opinions of the guests and sponsors are solely theirs and not that of the hosts or management of Punjabi Lehra. Punjabi Lehra is not responsible for any interactions our listeners have with any businesses advertised on our show.

0: एक्सपर्ट।
1: हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505 और विजिट summitrealtyexperts.com। समिट रियल्टी एक्सपर्ट।
2: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
3: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है। ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500 416-817-6500।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਣਤਾਸ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਸ ਤਗੜ ਦੇ ਨਾਲ।
1: Disclaimer, the content shared on this radio show is for informational and entertainment purpose only. The hosts are not liable for any actions taken by listeners or callers based on the information provided. Enjoy.
2: Asi karde ha fikar, tusi raho befikar, tusi jiyo befikar. Ki gal bhai ji, enne befikar ta tusi mainu kade nazar nahi aaye. Raaz ki hai. Befikar hon da eh raaz mainu ditta hai Jaswinder Kaur Taggar di insurance policies ne. Sadi life insurance, truck drivers lay disability te critical illness de change plans. Sadi parents lay super visa insurance te bachiyan layi RESP. Tusi vi raho befikar te call karo Jaswinder Kaur Taggar nu 6477652345 647-765-2340।
3: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 647-702-23।
4: लाइसेंस नंबर 10394।

0: बयान थी अपनी जिंदगी और सोना था अपना मकान। हाय
1: देखो वैसे पहला हुण तां चलो ये सारा कुछ डिफरेंट हो गया, हुण वैसे बेड बग्स वगैरह हुंदे आ है ना, पर पहला खटमल बड़े हुंदे सी है ना, आपां जदों इंडिया रहिंदे हुंदे सी कईआं दे मंजिआं दे विच वड़े होए हुंदे सी, फिर रात नूं सुत्ते पिआं ते फिर ओह जरूर कट कुट जांदे सी है ना, ते कई फिर दवाईआं दवूईआं छिड़कदे हुंदे सी। खटमल किन्ना मशहूर हुंदा सी पहलां वी मंजिआं च हुंदे आ लुके होए, पर हुण तां मैनूं लगदा जिवें हुण तां चलो ओह तों बाद किन्ना छिड़काव होण लग गिआ दवाईआं दा नहीं है, पर इत्थे हैगे खटमल इत्थे भी मैनूं तां लगदा नहीं वी, पर कई बार कहिंदे हुंदे आ बैड बग्स वगैरह ओही खटमल ही होणे आ ते नाल कुछ होर ऐड हो गिआ होणा है।

0: यारों के साथ जश्न या फैमिली के साथ करना हो जश्न, ढाबा ऑन द फॉल्स आए, टेस्ट का वादा और चॉइस भी ज्यादा।
1: दिल्ली वाला बटर चिकन, रोगन जोश, सोया चाप, बेस्ट वेज नॉन वेज बिरयानी इन द टाउन, बेस्ट वेज नॉन वेज एपेटाइजर या माउथ वाटरिंग मेन कोर्स खाना हो तो सीधा चले आए ढाबा ऑन।